नेकी से चलें बदी से डरें, यानी कि बुरे काम तो उसी डरिए नेकी ना चलिए, ताकि हंसते हुए निकले दम। साढ़े एक रिश्तेदार सी, बड़ा अमीर सीगा, उन्होंने थिएटर्स भी चलाए, मतलब बनाए साढ़े दानियां सी, उन्होंने सारा कुछ कंट्रोल च करके अपने अंदर करके दब लिया। जो आप दूसरों के थ्रू कमाने या तो आप उन्होंने एप्रीशिएट करिए कि ये थ्रू मैनू भी इनकम आ रही है, आई एप्रीशिएट यू, तो जो अपन उन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं उदो असं आप ही नीचे कर जाते हैं। तो उन्हें कुछ यह जे हालात च हो गया कि उन्हें बड़िया नाल ठगिया ठोरिया मारिया, धोखे किए, भैं भरावान नाले कर ले, सकिया ना भी कर ले, ना दस सकता सी मैं, बड़े अमीर बंदे से लुधियाने के, तो सब नगर च रेंदे होंदे सीगे, कॉन्वेंट स्कूल के कोल, सैक्रेट हार्ट के कोल। कहा जाता है कि साढ़े उस रिश्तेदार संगल पा के गराज के बन्निया जाता सी, क्योंकि उन्होंने पागलपन के दौरे पैने शुरू हो गए, गुनाह ही इन्ने किए, पाप इन्ने किए, पागलपन के दौरे पैन लग गए। पहला वह मैं ही करता फिर जो हरेक बंद कहता सी, मैं ही हाँ, बस मैं ही दसूँगा, मैं हाँ। सो उस टाइम उन्होंने संगल बन के रखते होंगे सी, क्योंकि वह कंध च सिर मारता सी अपना, उन्होंने संगल बन के बचाले रखते सी, बाहां ते बन के साइडां तो ना इधरली कंध कोल जा सके ना उधरली कोल। इह जे हालात दे विच ओह व्यक्ति गया। एक होर बड़ा अमीर बंदा साढ़े रिश्तेदारी चो ही मेरे, मतलब मेरे, मैं वैसे थोड़ा गल्लां आया करदा हुंदा जिवें आपां इकट्ठे सारे बैठे कर दिंदे आं। मेरे नानका परिवार मेन लीडिंग ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री दे विच ने, हुण भी पहलां भी, पंजाब दे विच लीडिंग ट्रांसपोर्ट, लीडिंग दा मतलब हुंदा पहले एक या दो नंबर दे उत्ते किसे सैक्टर दे विच रहना, पहले एक या दो नंबर पर लीडिंग लैवल दे उत्ते हैगे। साडे रिश्तेदार हुंदे सी, कोई उहदे मूहरों भी लंघदा सी ना, उहने गाल कढ़नी, बड़ा ताकतवर। छोटी जी एग्जाम्पल आ, जिहड़ी फिल्म आई सी अजीत सिंह संधू दी, इहदा रिश्तेदार आ परमराज उमरानंगल, इस समय कमिश्नर की पोस्ट उत्ते सी, उह हुण मैनूं पता नहीं खुट्टे लैणा। इहने भी बड़े इहो जिहे काम कीते ने, अजीत सिंह संधू वर्गे मशहूर सी इह वी, ते इहो जिहे अफसर उहदे कोल ऊं आ के बैठे रहिंदे हुंदे सीगे। साडे उस रिश्तेदार को एवें मैं बैठते बैठे देखना इन्हों को, आई जी यू जी बैठे होने। वो एक समा आया उन्हों का, उन्हें ना जुल्म बहुत किया, किसी की एक दो बसा चल दिया होनी, उदिया बसा अगर खाली बसा ला देनिया अपनिया, उन्हें सवारियां चक लेनिया, वो बंदे तो टैक्स ना पे कर होने, फिर वो बस खरीद लेनी मुफ्त मंगो तो, जे कोई होर खरीदा सी उन्हें वो तो परचे करा देने, यह जहा कुछ कर देंगे। अंत सहाय होया, सच्चे का सच्चा ढोया, जो सच है ना अंत तक अगर नाल चलता। आप गलतियां करांगे सारे, प्लीज़ कोई संत नहीं, सब तो कटिया बद्दा थोड़े च मैं इस वेले, जिन्हें भी लोग तुसीं सुनते पे हो। सच्चे का सच्चा ढोआ तो नाल सहाई जिहड़ा होना है अपने, उस बंदे की जो मौत होंदी है उहदी गर्दन गिर जांदी सीगी, शूगर की बीमारी लग गई सी, पैर कटिया गया सी, अद्धा अद्धा पैर कटना पिया शूगर करके, गल गया सीगा, गर्दन गिर जांदी सीगी थल्ले नूं, तो कला बैठा हुंदा सी कुर्सी ते, उन्ना ही पैसा सीगा, सब कुछ उन्ना ही सीगा, पर ताकत परमात्मा ने वापस ले ली सी। तुसीं कहिंदे ना ट्रंप आ खड़े खड़े दे पू निकल जांदे ने, इहदे 25 वीडियो ने, लोग स्मैलां भज लैंदे ने, खड़े खड़े दा सारा कुछ विच्चे निकल जांदा, डायपर लगे होणगे शायद। इह बंदा किन्ना जलील करदा दुनिया नूं, हउमे दी जे कोई एग्जाम्पल देखणी है, लाठी देखणी है, इहने लाठी नहीं देखी परमात्मा वाली, इहनां दा पता ही नहीं लगना कित्थे, कि तुसीं कहिंदे इक ट्रंप हुंदा सी जो चलिया गया पता नहीं कित्थे आ, हौमे माड़ी आ, चाहे वह मूसे वाला चाहे कोई होर है। जो तुम रोज़ लोगों बदकोहियाँ करते हो, माड़ा चंगा बोलते हो, हरेक दिखाने कि तू तो थले आ, मेरे तो तू बराबर छटार भी है नहीं गा, है ना, ये नहीं गल है महाराज, थोड़ी वह बख्शिश है जी थोड़े तो वापस ले लेंगे, तू दाता दातार तेरा दिता खावना। सो जो असं शुक्र करते हैं कि सच्चे पातशाह पता नहीं की कर होना असं यह जहा कि सानू आ सब कुछ बख्शिया, थोड़ा बहुत शुक्र है भाई जी, थले जमीन पर सौ लियो जिन्हें मैंने सुन दौ, कद कह दौ कि थोड़े मन च आया कि तुम कंप्लेट करनी चाहते हो, लाइफ इदा की हैगी है। स्टूडियो नंबर 905-673-3337, कोशिश करो आप जिंदगी वधिया जीए। मैं थोड़ा की दसा लास्ट वाले रिश्तेदार का मेरे का, कि पैसा उन्ना ही सीदे को, ताकत खत्म हो गई सी, लोग सिर चुकाने हट गए से अगे, क्योंकि आप ही बीमारिया मरिया जा रहा है, गर्दन गिर जाते मफलर जहा पा जाता गल के पट्टा जहा पाते होंगे, जरा पैर कटिया हुआ ड्राइवर फड़ के उठा, ड्राइवर बिठा, वो आदमी जरा तुरे जाते रोड से डी एस पी गाला कर दिता स खड़े नाका लाए हुए, वो आदमी अज इस लैवल से कि मुलाजम भी बस फॉरमैलिटी करके सत श्रीकाल बुला के लंघ जाते, दुनिया में बुला हट गई।

0: This is our medical insurance. Number hai ga ji 416-817-6500. This is Harpreet Saini, Chartered Life Underwriter and Certified Health Insurance Specialist from Top Choice Insurance Agency.
1: एच के मूवर्स का हो साथ, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात। एच के मूवर्स होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल वी मूव इट ऑल वी ऑल्सो शिप कार्स वी ऑल्सो डू स्टोरेज 30 years एक्सपीरियंस वी सर्व विद अ स्माइल एच के मूवर्स गिव अस अ कॉल मिस्टर हरमिंदर 416-524-6704
2: हासल फ्री मूविंग के लिए एच के
3: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश खरीदिए जीटीए में कहीं और ना मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन 9054586808
4: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी ब्रैम्पटन निवासियां ले खुशखबरी हुण जदों भी तुसी कैनेडियन इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो तां ब्रैम्पटन विच इंडियन फ्रूट लैंड दीआं चारों लोकेशनां विचों जिथे मर्जी आ जाओ चाहे 15 फैंडोवे ब्रैम्पटन होवे जां दूजी लोकेशन 45 डस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड ते हुण चौथी नवीं लोकेशन 1465 मेफिल रोड ब्रैम्पटन या ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूट लैंड 9054569900

0: यार ये गीत कैसा गीत बन गया है। जनाब नुसरत साहब ने इसका म्यूजिक दिया। नुसरत फतेह अली खान साहब के नाम से भी एक करी बई कैसे वो म्यूजिक के गवैये हुए है, कैसे वो दुनिया च नहीं इदा के गवैये होंगे, ये गवैये जन्म कदी कदी लेंदे होंगे एहो जे गवैये। हेलो हाँ जी सर,
1: मैं क्या जी तुसी गीत नू तो ऐसा रेप्रेजेंट किया, एक पास तो मैं लग गया कि थोड़ा डिफरेंट जहा है। मैं क्या गीत तुसी क्या मैं हंसरा हंस भाई का गीत लगा रहे नाले तुसी क्या हाँ जी जे किसी ए सी खराब हो गए। मैं क्या हंसरा भाई ने ए सी ते कदों गाना गाया।
0: हंसरा नू भेज दांगे आपां ठीक है।

गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टॉलर शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादी उम्मीद करते हैं तो अज का दिन अच्छा गुजर रहा होगा, लॉन्ग वीकेंड अच्छा गुजर रहा होगा। साड़ी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नैशनल इंटरनेशनल खबरों ने तुहानू जोड़ के रखे। 1 बजे तो बाद कुछ गीत संगीत का प्रोग्राम भी चलेगा और सुखी निजे साहब वतनों दूर प्रोग्राम तुहाडे लई पेश करनगे और मनप्रीत जी इंडिया तो खबर पेश करनगे। अज छतरी छत्ता रिपोर्ट सब तो पहला हाजिर है जी। 6:09 ते सूरज आया, 8:37 ते शाम नू चले।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले फॉर जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: आज खुश तो बात हो गया था।
2: ओ ता होना ही है जो तो तिलो वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग।

0: चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल।
1: इतनी बस नहीं, जेंट्स ने चांदी के कड़े, चांदी की चेन, चांदी के ब्रेसलेट,
0: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट।
1: फोर एंड अवनीजर द इंटरसेक्शन पे गुरुद्वारे बाय प्लाजा के बीच सिल्वर हट
0: 6473393521।
2: वे जिथे चलेंगा चलूंगी नाल तेरे, वे टिकटा दो ले लई।
3: लेनिया हो या चार, बिजनेस लई जाना होवे या फिर घूमन लई, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट, हर तरह दे ट्रैवलिंग पर्पस लई कांटेक्ट करो। एयर टिकट्स, इंश्योरेंस, पासपोर्ट एंड वीजा सर्विस ओ भी रीजनेबल प्राइसेस ते, स्पेशल ट्रैवल पैकेजेस भी अवेलेबल ने। कटारिया टूर एंड ट्रैवल 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा, कॉल 9056781200।
4: रात हमें छड़ दिनी है, पर जनाब चले किथे हो?
5: मैं चलिया स्काईडोम ऑटो ते बॉडी सेंटर, जो सर्टिफाइड कोलिजन शॉप है, जो करनगे मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर। एक्सीडेंट होने ते इंश्योरेंस कंपनी नाल डील भी कर देने। स्काईडोम ग्रुप ऑफ कंपनीज पिछले 25 साल तो तुहाडी सेवा विच।
4: भाई ते कारां दे नाल नाल बसां ते वड्डे ट्रकां दी रिपेयर ते बॉडी वर्क दा भी काम कीता जांदा है। फ्लीट वास्ते स्पेशल पैकेज ने।
5: कॉल करो 905-874-9878।
6: बम्बा गया मैं जिथे जावा, मुंडे कहंदे बम्बा गया।
7: नी मम्मा चा कादिया गल्ला ने भाई, ओही रेस्टोरेंट ने दो चार, ओही दो चार चीजा खान नु, फिर भी लोकां ने 50 लाख चुक्या कनेडा आउन नु।
8: भुआ जी, एदा मतलब शायद तुसी स्वीट महल नहीं गए?
7: नी मैं मर जा, ओथे क्यों होणा?
8: GTA दा सब तो स्वादला खाना ओथे ही ता मिलदा है। सही सुनया भाई, जिन्ना सोहना रेस्टोरेंट है उस तो भी ज्यादा स्वाद स्वीट महल दी हर एक डिश है। जलेबियां, पकौड़े, समोसे, टिक्कियां, व्याह होवे पार्टी या होण किट्टियां, स्वीट महल दी वेज नॉनवेज आइटम्स ले डाइन इन करो या केटरिंग करवाओ। इको नंबर कुमाओ 416-679-9999 और विजिट यूनिट 9680 रेक्सडेल बुलेवार्ड टॉबिको। स्वीट महल, ट्रेडिशन ऑफ टेस्ट।
9: ओ आज ताँ कमाल ही होगी, घर वाली कहंदी किचन च रोटी ओदो ही बनू जदो नवे अप्लायंसेस आउणगे। मैं गया लाइनिंग गल, उसने वेले गड्डी चकी ते ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस दे मूरे ले जा खड़ी करती।
10: जी हाँ, एना ही सौखा है अपनी किचन नु एक नवा रूप देना। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस दे सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलणगे, हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस दे। फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, लॉन्ड्री सेट, जो मर्जी ले जाओ। 801 बोवे ड्राइव नियर चकूजी, 905-450-2880।

0: Galhavi Real Estate, sale purchase of businesses, commercial transaction, will, power of attorney, या फिर affidavit दी, ता सोचेंदी लोड नी, इको नाम याद रखो, Law of Aman Sharma, जो अपने clients नो देंदे ने, excellent legal services, Aman Sharma, LLB, barrister, solicitor and notary public, 25 Cherry Crest Drive, Unit 6, Brampton, call 905-913-2355, 905-913-2355.
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार
2: ओए कल्ला मैं नहीं अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने
1: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा
2: हां जी तुसी भी नोट करो इंश्योरेंस कोई भी होवे
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते
3: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
2: 416-509-1509
3: at insuranceforyou.ca
4: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी ब्रैम्पटन निवासियां ले खुशखबरी हुण जदों भी तुसी कैनेडियन इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो ता ब्रैम्पटन विच इंडियन फ्रूट लैंड दियां चारों लोकेशनां विचों जिथे मर्जी आ जाओ चाहे 15 फेंडोवे ब्रैम्पटन होवे जां दूजी लोकेशन 45 डस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9
5: व्हेन यू अर्न पॉइंट्स ऑन एवरीडे परचेस
4: ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड ब्रैम्पटन ਵਧੀਆ ਗਰੋਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੂਟ ਲੈਂਡ 905-456-9900
6: ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਸੈਮੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ
7: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ
6: ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਆਵਾਜ਼

0: ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ
1: ਫੋਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-725-2551 416-725-2551
2: Canada Day Study Visa, Express Entry, Canadian Express Entry, Spousal File, Parents PR, Super Visa, Nanny, Work Permit, Farmer, Investor, ya Self-Employed di File. Gal ki, Immigration di har problem da solution lain lai, Community de jaane pehchane, ate tajrbekar Immigration Consultant, Gary Virk nu milo.
3: Koi case refuse ho gaya ya appeal te chala gaya, hove immigration da koi vi masla, hamesha yaad rakho ikko hi na, ate ikko hi tha. CIC Immigration, hone hi call karo, 416-456-6161
4: कनेडा विच रहंदे होए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग ले
5: इसे ले मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
6: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स ले सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट ले हुणे कॉल करो 416-455-3381 ते 416-457-3381
7: ਲੱਖਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਨ ਦ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਐਮੀ ਵੇਅਰ
8: ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੂੰ ਆਓ ਜੱਟ ਖੱਬੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਦੇ
7: ਟੂ ਸਾਊਂਡ ਲਾਈਵ ਐਂਡ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਮੀ ਵੇਅਰ ਲਾਈਵ ਇਨ ਟੋਰਾਂਟੋ August at Great Canadian Casino Resort. Toronto Valeo, ready ho jo. Buy your tickets at ticketmaster.ca or call 647-964-8573.
9: Simply Indian brings you all simply delicious deals. Buy one, get one free every day. Sure, 10 to sham 7 baje tak on dine-in and takeouts. Maza lavo Sunday no paratha plate. Monday, manpasand kulcha plate. Tuesday, chana bhatura. Wednesday, lajawab veg thali. Thursday, yummy haka thali. Friday, maza lavo saag makki di roti da. A yummy deals is Simply Indian di sariya hi locations te. Dining, takeout and catering also available. Call at 905-794-8111. Simply delicious. Matlab, Simply Indian. Yeah.

0: कर लगाओ।
1: हाय चूहा ते कॉकरोच भी, सुन लो मेरी गल, मैं इस किचन च खाना बनाना ही नहीं
2: है। फिर कॉकरोच जो है वो हाले महीना पहला ट्रीटमेंट कराई सी।
1: मैं तेरा पहला ही कहा सी सस्ते दे चक्कर च ना पो, हुण उपरों बेसमेंट वाले बेड बग दी कंप्लेंट भी करी जांदे आ।
2: ओ मैं तां कहना घर ही बेच दिंदे आ।
3: आप घर चो बाहर क्यों जाना, चूहे कॉकरोचां नूं कड्डो। टोरंटो पेस्ट अरेस्ट नूं कॉल करो, जिहड़े छोटे तो छोटे घर तो लैके वड्डियां बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, मोटल्स, नर्सिंग होम्स विच वी काम करदे आ। सस्ते दा दावा तां नहीं पर कम दी गारंटी है। 647-515-8000 टोरंटो पेस्ट अरेस्ट, सिक्के बंद कम दी गारंटी। 647-515-8000
4: कैनेडा दे स्टडी वीजा, एक्सप्रेस एंट्री, कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री, स्पाउसल फाइल, पेरेंट्स पीआर, सुपर वीजा, नैनी, वर्क परमिट, फार्मर, इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल, गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सलूशन लैण लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो।
5: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया, होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन। हुणे ही कॉल करो
6: 456-6161-61।
7: याद रखो मोना महंगी From insurance for you
8: 416-509-1509
7: or visit insurance for you.

0: last, so CHA clearance sale is on August 6th to 10th. Save up to 70% on furniture and decor from Must Société and Jardin de Ville. 5 days only, 1270 Caledonia Road in North York, while supplies last.
1: की तो हानू इलेक्ट्रिशियन दी लोड है सर हाई रिस्क इलेक्ट्रिकल ते कॉल करो हाई रिस्क क्यों क्योंकि साडे को लाइसेंस नहीं है ते सी इलेक्ट्रिकल परमिट नहीं लेंदे जाने कि तुसी पक्का नहीं कह सकदे कि साडा काम किन्ना कु सुरक्षित जकनूनी है पर एक गल पक्की है कि जदों भी असी आवांगे असी तुहाडा टॉयलेट जरूर वरतांगे इसलिए हुणे कॉल करो असी वादा करदे हां कि तुहाडे घर नूं आग नहीं लगेगी शायद
2: अपने परिवार दी रक्षा करो सिर्फ लाइसेंस्ड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर ही वरतो अते यकीनी बनाओ कि ओह ईएसए परमिट हासिल करन होर जानन लई highlicense.ca ते जाओ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अथॉरिटी वल्लों एक सुनेहा
3: दिस इज एएम 530 CHLO AM सर्विंग ब्रैम्पटन मिसिसागा टोरंटो द GTA एंड द वर्ल्ड एट am530.ca The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
4: Punjabi
5: Lehra program samarpit hai rangle Punjab nu.
4: Punjabi boli te Punjabi sabhyachar nu.
5: Guru sahiban peeran fakiran di dharti nu.
4: Thandiyan chhaavan jiyan maavan nu.
5: Chaudiyan chhatiyan wale gabruan nu.
4: Charkha katdiyan te pingan jhootdiyan mutiyaran nu.
5: Lok geetan bhangde ate gidhyan diyan chhankaran nu.
4: Program Punjabi Lehra.
5: Hafte de satte din prime time te Punjabi Lehra Punjabiyat di seva vich.
6: The views and opinions of the guests and sponsors are solely theirs and not that of the hosts or management of Punjabi Lehra. Punjabi Lehra is not responsible for any interactions our listeners have with any businesses advertised on our shows.
7: ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਰ ਐਕਸ